0: की रेडियो राजापुर से फिर संध्या 4:30 बजे से प्रसारण में रखा है। अधिकृत कार्यक्रम में हमें विवेक महन के जीवन बताई अनुभव और सुखा दुखा के विषय में बातचीत करना करती है। अधिकृत कार्यक्रम में आज हमें राष्ट्रीय नगर पालिका वार्ड नंबर 5 आपूर्ण गाँव में बैठना बुढ़िया थानू जी से आज जीवन बताई अनुभव और सुखा दुखा के विषय में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बुढ़िया आप के हमारा कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप भी बात किया
1: आजकल का भात पकाई छू समझ के चलू

लड़ाई हुई जिसको खाली लड़ाई हुई तो वो कहते हैं लड़ाई को मुझे नहीं लड़ाई नहीं लड़ाने कहने देने की चीज हमने कही थी हमने कहा कहाँ गए वो सब विश्वास नहीं सब

केरल कक्षा संचालन करना विद्यालय व्यवस्थापन समिति जिम्मेवारी दिया विद्यालय पर्यटन गांव पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास ढका ने जानकारी दिन्भयो। बांसकोड़ी पारा पालिका और मधुबन नगर पालिका भी हमसम विद्यालय बिहान 10 देखि 104 बजे संचालन कर कक्षा संचालन करने बारे हालसम कोई निर्णय नांसकोड़ी नगर पालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख छात्र शाही ने जानकारी दिन्भ अनुसार हप्ता में 2 दिन विद्यार्थी बिहान कक्षा संचालन करता पठन पाठन का समय अपने अवस्था भारतीय बताए पश्चिम तराई का जिला में कई दिन अत्यधिक गर्मी पड़े विद्यार्थी संख्या भैया कक्षा तथा तीन छाना भैया विद्यालय में दिवसों कक्षा संचालन कर

0: सत्रिथनाथाय जयम् सद्यकरी तुलपान मदिरम सेतुल रही तरम फल नियतन करी आज निर्भय काली जीवन अतरा विषाणु को सेवाती स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी दरित्व जारी संदेश
1: कहाँ से लग रहे हो? इधर मैंने इंद्रवाद से पांचों

0: अपने सेवन में अपनी बद्धता शारीरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे के बद्धता घटी निर्विक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में जीती है। यहाँ कल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल बढ़ाने ऐसी कौशल्य अस्पताल घासगढ़ी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करा दी।
1: अस्पताल से तेजी सेवा
0: चौबीस घंटे डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए।
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच कई
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए।
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा। प्यारालाइसिस को मुकाबला नशा दाबक हाथ द्वारा निचलना बिरामी का फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेशर थेरापी विधि बसे उपचार कई
0: नशा बिरामी उत्तर के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुप्रेशर थेरापी से सफल उपचार कर दे।
1: 24 घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था कई असहाय नागरिक एकड़ महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कई कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण पाटन
0: संपर्क फोन नंबर 084-00-192 और 084-00-210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय कोर्ट को लेकर।

0: संरचना कूटनीतिक कैली यहां पर स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पर्वा करे कौशल्य अस्पताल भाषणी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल से दे देना सेवा
0: चौबीस घंटा पकड़ के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जाँच कैली
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान खाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जाँच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब और सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको मुगाम बिना नशा दाग गुलक हाट गोरा अनि चलना बिरमेको कर्णकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे उपचार कैदी था
0: नशा दर दिले बिरमी हुकन के बिना पेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैदी था असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन सेवा 10% छूट के व्यवस्था कैदी था कौशल्य अस्पताल पाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084 4000192 और 0

0: 特别的。
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हामी प्रतिबद्धता प्रति मेरमेरिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ रूपमा वृद्धि अहिले यहाँ कान्तुमा स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक तरल बाकाले कौशल्य अस्पताल बाँसकडीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

अधिकार असहाय नागरिक या कर्मी र अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकको कर्पूर्ण सेवामा 10% छुटकी व्यवस्था गरिएला। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसरी शाखा 5 बाँसरी बर्दिया पुरानो पेट्रोल पम्प दक्षिण बजार सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 084400210 बाँसरी बर्दिया संसदीय पुल 11 14 मध्ये।

0: जाने से बचल है छाता नदी प्रकाश बनी है जैसे ध्यान पानी पी रखी फल खाई हर स्पीकर जुड़ा बने ना
1: आज इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरण विशिष्टता समूह की ग्रुप की प्रतिभा जिला अंतरण हुए और विपद को बताया उत्थान चिंता तथा सबरीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी संदेश
2: सब ठाकुर का पत्थर को अवसर उपचार कर

0: की बात लोग मुख्य था किस्त की जैसे तो सामान घटक कर रहा हो 3 लाख ऋण ले रहा हूँ 3 लाख से ढेर तीस है हम मन तीन को ना पड़ी बात कर रहा
1: हूँ और अपना 3 लाख रुपया ऋण ले रहा थी 3 लाख रुपया चिता कोई सिर्फ लगा की ऋण ले कर कई प्रोफेशनल पास की रफ पर इतना तो अपना था जुबा और उससे अपना सामान और ज्ञान सही कर 3 लाख रुपया से ज्यादा की रफ पड़ा।

0: 3 लाख रुपया परिवार का था
1: और अपना 3 लाख रुपया ऋण लेना थी 3 लाख रुपया पिताजी से लगा थी
2: কখন কখন

सात्विक खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूमपान मदिरा मसेतु रही, तनावना नियंत्रण करी, आज कार्तिक जीवन अथवा मुसलमान रोगों से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई। रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकार्य स्वास्थ्य कार्य ने जनहित में जारी संदेश।

0: वन्य जन्तु संरक्षण तर मानव जाति दिवस सम्मत निर्णयमूलक हर्षे यहाँ संरक्षणमा हाम्रो सक्रिय जुटी
1: अशुभ सम्पत्ति
0: शून्य 84 24 156

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा।

बधाई का की हमारे दादा बहुत दिन के सारी तरह देखने नौ रात के सब कुछ ने सजाई की बधाई प्रभु में तुम्हारे कार्यक्रम के द्वार खुले जाए एक मित्र सुखरा की बदन बदल सकने की

0: करता संध्या सभा सभापति हमारा संदेश में अपना आवाज स्वागत पास इंदु संगम में हम कुमार दिया से उत्पादित हमारा संदेश पर दिया का साथ राजापुर बाधित रेडियो रेडियो भारतीय मानव जानकी का उपाधि पर बाथरूम प्रसारण के बाद हमारा संदेश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से बात करी सड़क नाटक में से बाल विभाग लैंगिक हिंसा को लागू दुर्देशन विरुद्ध सशक्त संदेश सीमा क्षेत्र में लागू सत सहित पास करी गयी का नियंत्रण में बढ़ते प्रतिवादी प्रभाव सामाजिक विकास मंत्री त्रिशा चौधरी प्रदेश सभा में विधेयक पेश हो बजट भाषण से 15 गति 4 बजे बिना
1: नगरपालिकामा बाल विवाह लैंगिक हिंसा तथा लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण गर्न उद्देश्यले सचेतनामूलक सड़क नाटक कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाका आर्थिक सहयोगको आयोजनामा डिजिटल फोन संचालन विधेयकको कार्यक्रम बाँसकुटी नगरपालिकाका दृष्टि नौ क्याम्पस नौ माध्यमिक विद्यालयमा नाटक प्रदर्शनका विधेयक कार्यक्रममा चर्चित नेपाली टीवी श्रृंखलाको राष्ट्रिय कलाकार ताजी मानव संयुक्त कलाकार जीवन्त अभिनय प्रस्तुतकर्ती विद्यार्थी अभिभावक तथा स्थानीय समुदाय फल गम्भीर सन्देश जनक शिक्षा शाखा एकै छत्र भाषाले चार्जहरूबाट नाटकमा चाहिँ बाल विवाहले बाल बालिका वर्गको भविष्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव लागू सचेतन मध्ये परिवार र समाजको अध्ययनमा विकृति तथा लैङ्गिक हिंसामा मानव मर्यादामा आधारधारक प्रभावका रूपमा उजागर गरिदिनु बाँसकुटी नगरपालिकाको नगर प्रमुख खड्ग बहादुर खड्का समुदायको पुनर्वितरण सामाजिक समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गराउ सिंह कार्यक्रम आवश्यक रगत बोटेकी सचेतना कार्यक्रममा विद्यालय तहको विद्यार्थीहरूको सही जगह छनौट गर्न अभिभावकहरूको जिम्मेवार बनाउनु सबको समुदायको हिंसा तथा दुर्व्यसन विरुद्ध एकजुट प्रेरित गर्न कार्यक्रम विश्वास लिएर लागू सबै युवक प्रकरणबाट जिल्ला प्राधिकारीले प्रख्यातका अनुसार बाँसकुटी नगरपालिका छ डमरीका 21 वर्षीय मनिष शाहमा त्यहाँको सत्साहित प्रहरी नियन्त्रण गरिएको प्रहरी चौकी पालिका प्रथम सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल स्थितिमा सुरक्षा बलमा हेडक्वार्टर कण्ठ कृषि खटक सहित जोडी बहत्तर गाउँपालिका साथ कर्णाली पूर्व स्थित भारत नेपाल सीमा ढाकामा चाहिँ सन्तासपद रूपमा नेपाल घर पैदल शाहमा लोक जाँच गरेर जाँच क्रममा

तथा प्रवर्तन प्रकाश संबंध में व्यवस्थापन विधेयक का नामक उस सरकारी विधेयक सामाजिक विकास मंत्री चरणजय तिमिर सेना प्रदेश सभा समक्ष पेश करना पेटा लुम्बिनी प्रदेश में थारू समुदाय को लेखे प्रसुभा सड़क तथा आदिम काल से चलते आई सामूहिक प्रथा जनित कपिला कुमार संरचना संगठन चाल चलन रीति रिवाज संस्कृति संपदा घटना पर्व तथा प्रमोशन लगायत का परम्परागत व्यवस्था को संरक्षण हो पुष्टांतरण तथा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक प्रति विधेयक ज्ञानगत रक्षा हासिल विधेयक मसे थारू समुदाय के प्रथा जनित परम्परा अलग असल अभ्यास का पहचान अभिलेखी काम संरक्षण प्रबंधन तथा ऐना पुस्तकमा हस्तान्तरण गर्न उद्देश्य लेखिँदा हालसम्म असीम परम्परागत अभ्यास व्यवस्थित र क्षेत्र विधायकी कानूनका आधार सम्बन्धन प्रदेश सरकारी विधेयकका रूपमा यी हना आधार भइरहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा थारू समुदायको जनसङ्ख्या 18,7,124 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याका 6.1% हुँदा उसले कर लुम्बिनी प्रदेशमा तेह्र थारू समुदायको जनसङ्ख्या 7,32,69 अर्थात् प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याका 14.3% तथ्याङ्कमा थारू समुदाय विशेष गरी खतान पाठी प्रक्रिया कपिल कस्तो रूपन्देही तथा नगरपरासी जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका

ने घटना में कुछ उच्च कहा का व्यक्ति ऊपर सुस्त अनुसंधान कर संसाधना सिफारिश कर आयोग अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री सुशीला कार्ति तत्कालीन गृह मंत्री ओम प्रकाश सरन पूर्व न्यायाधीश गंग बहादुर कार्ति तथा वर्तमान गृह मंत्री सुजन गुरु लगायत का अभिव्यक्ति है अभिनंदन उत्साह पैदा कर लगता

0: रामबाण प्रयास और मृत्यु का कारण का दर्शन पहले उत्तेजित बनेगा जिसे निष्पक्ष अनुसंधान कर आयोग का अधिकारी था और नशीन कानून अनुसार कार्यवाही कर आयोग सरकार ने सिफारिश कर बनाया।
1: राष्ट्रीय समाचार सुन्दा हमारा संदेश का समय होता हमारा संदेश महिला से पैदा मुख्यमंत्री संदेश लेकर बढ़ते तो पास करी नगर पालिका में बाधित लैंगिक हिंसा

कर रहे हैं कुछ सिफारिश करेगा सर। आगे तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी सरमौली गृहमंत्री रमेश सिंह को तथा तत्कालीन संचार मंत्री पृथ्वी सुधर गुरु लगातार नया कानून बनाया है।

0: ईश्वर जी ने धोखा कर बोला अर्को महीना आई सको भोलि कराने थाली सके कृष्ण तिरने दिन आई सको भनी राखे यो महीना मेरे कृष्ण तिर दिन सही भाज अर्क महीना मेरे दुबई जाने को कृष्ण तिर
1: थी तब अप्ठारो भैस कति अप्ठारो पड़े बेला में ऋण लिखा ऋण तो तीर्न पर्च कर्जा को रूप में प्रवाह होने रकम सर्वसाधारण बचतकर्ता को संपत्ति हो कर्जा लियत दस कर्जा चुक्ता नगर कानूनी कार्यवाही में पड़ने पूर्व निर्धारित समय में कर्जा चुक्ता

0: जीवन संभव नहीं होना हो जाओ से क्या कर समर्थन में हमारा सब प्रिय चुटी
1: पशु अमूल्य संपत्ति आगलागी का कारण से छह वर्ण प्रीतम से था मेरे से बनना आगलागी नियंत्रण करना हमारा स्वतंत्र दायित्व का कर्तव्य हो
0: आगलागी में से बनना हो कसी का बचे ना
1: हमारा सब कुछ अपन बनना क्षेत्र में आगे रेखा बनेगा सुखा समय होने से आगा पाकर मरमत समारोह से सफाई करी
0: बीरी चुनौत मात्र पीक आदि बुटाई बनोमन ने फाटी
1: बनो भीतर बाल गई ना काम नहीं करी
0: बनोमन पिकनिक खाए गई से उछे कमर रहन आगे बने से बुटा के चेहरा छोड़ी
1: सुखा मौसम बनोमा आगे लगा वस्तु सलाही लाइटर लेकर नहीं गई
0: बनोमा आगे लगा देखा से लगभग बन कार्यालय सामुदायिक बन और प्रहरी खबर करी सबकुजन सुरक्षित तरीका से आगे बुटाई बनोमा विचार क्षेत्र अनुसार बनोमा हाजी लगेगा हाथ लागे भाई पैदा कमल फिर काम करना मरे हाथ लागे मशीन नुकसान दिन बीत वसूल कर साठी हजार रूपया समय जरिमान व तीन वर्ष तय कर दिन सजाए हुई था उन्होंने बनो हाजी लगेगा व हाथ लागे हुई से क्रियाकलाप नहीं करे वो अपराध व शरीर को कम सजाए भागीदार नहीं बने डिविजन बन कार्यालय बढ़ दिया फोन नंबर 084-420-156

करने के बाद मेरे भाई को बाकी मेरी ग्यारह बोलियों को सुनी प्रेम को अपने आप में आप खुशी अपने

ब्रह्मांड को ईश्वरी को पति को शक्ति का हो कृष्णपति आत्मसंतुष्टि विकार में लगी हो वहां पूर्ण रूप समस्या केन्द्रित होना चाहिए। सरस्वती जीवन हमने तय करे कि

एक काल का समय बनना ज्यादा समय बड़े किराना का भाई व्यवस्थ में उसने उनकी स्थित ज्ञान थी पुराने पर आता उनकी प्रभावती पदा को बिंदु आपको जिला समाप्त होकर किसी को प्रस्ताव गरीब नहीं हो सकता बिक्री को यह पता जिसको बुद्धि और चमत्कारी पूर्ण थी इसको पहले तो राधा कृष्ण जिनो की वासुकी